0: अच्छा है चलो सुतेरी क्यों तान थे रेडियो ढोरबराई फ्री प्रोसेस 100.3 मेगाहर्ज मातृभाषा आवाज को आवश्यकता आज को आदिवासी जनजाति पहचान विवाह मूल नारानी पपरे तुरु आदिवासी संसारी हुई लगा तुरु ओलेवा प्रतिभा शुक्लागण्डकी नगरपालिका मई झो निबे नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ शुक्लागण्डकी नगर समन्वय परिषद ढोरी महासंघ सचिव बिर्सन श्रेष्ठ संघ जगतपुरी आदिवासी महिला क्वी पेटा लुता निबे छ्याम्याल बे बारेरी रुबे लागि बन्देबा चुतुरुल बे मुख्य प्राजन बेस्या यापन त्रिस्मी कलेक्सन दुरेगौडा लबदिमु दुरेगौडा सिक्देल अफसेट स्यारी च्याजा चोजा प्रतिभा त्रिस्मी कलेक्सनरी रिमे चमे खेबा छ्यामा छ्याबा उइमै न्यौमु क्योतान तिलया सिसेवालाबा अवसर प्रिमित विवाह अनुदङ गैलामु छले छले बन्देबा चुतुरु क्योमै रेडियो ढोरब्राई त्रिप्रसे 100.3 मेगाहर्ज स्यारी हब्दाल बे तान निहिम सोमबार नागरबे हुङिसे क्यु बजे सारी क्यु रानसम्म थेलखाम भिसा पन मुनिम मंगलबार ऐन नेसरबे ङाङिसे क्यु बजे सारी तु रानसम्म थेलखाम न्युलाई क्युई रेडियो ढोरब्राईला वेबसाइट निबे डालो न्युला पात्रो मोबाइल एप निपपरे फेसबुक पेज सेरिन विश्व तिकुरे थेलखाम विशेष नैर आदिवासी समुदाय निबे आदिवासी समुदाय तिनोरी प्रतिभा तमु समुदाय बे पिता लोता निबे बालो छ्याम्याल बे अवस्था बारे जानकारी पिबा किबा प्रयासरी बन्दीबा चुतुरु आदिवासी संसार त्योलाई खङामु तुरु थेल खाइसरी न्योलाई फोन कमेन्ट निबे हृदयले न प्रतिक्रिया जगो पिर सहयोग लिबा मु बिबा आशा निबे अपेक्षा नैला दिमु चुभन्दा नसुरबे तुरुरी न्योई छ्याब छ्याब तमु पहिलाई किलो किलो बिस्या पिया बिचु तुरुरी दरगाउँ तमु समाजला कोषाध्यक्ष तमुसे हुला छोजादी शुक्ला गण्डकी नगर समन्वय परिषदला सहसचिव निबे तमुसे हुला छोजादी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद जिल्ला समितिला सदस्य निबे बालो आदिवासी जनजाति महिला महासंघल बे सदस्य अमृता तमिसोनी तानन्ता लाभामो छ्याजलो क्योलाई हुइलामु छु रेडियो ढोरब्राईला सुरु आदिवासी संसार हजुर त्योलाई तिन छैन उयो फेरि उही र यो समाज म भने फ्यामिल बेबारे अनि चुम्बे समाज खास लिएर चुम्बे समाज दरगाउँ समूह समाजहरूले बारे लिन जानकारी झोको कि बाबु तान भन्दा नसु यौला तुरु थिसी किबा तान श्रोतामैलाई त्योला परिचय विभिन्न संघ संस्था निबे त्योला समाज दरगाउँ समूह समाजहरू निर्वाह लदिबा भूमिका बारे सिकुदे दिनु
1: ए ल धन्यवाद इच्छा ज्ञात बहिनी

लगता है न्यूज़ में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ हर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे।

0: 103.8 अन्तर्मनको आवाज
1: स्टुडियो टाइम अहिले बिहानको 5 बज्यो।
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठफेर पनी प्रोपाइटर बाजीराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301।